जी गुरु गरीब निवास यंत्र जामे सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी दे पावन स्थान तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे पावन स्थान दियां हाजरियां भरदे होए गुरु कियां संगतां वल्लों गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सत्कार वजो बेअंत माया अरदास कराई है सतगुर सच्चे पातशाह जी सतगुरु जी आप नाम जानी जानो सतगुरु जी कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी दे यरुकता दे नाम दे दात बख्शिश करनी असा मनसा पूर्ण करनिया हर मैदाने हर कार्ज फतेह करना सतगुरु जी कारज राज करनी यात्रा

पेशी इशनान स्वच्छ बस्तर चिट्टे कछहरे अते पंजा ककारां दे नाल त्यार बर त्यार हो के पौने 11 बजे तखत साहब जी ते हाजर हो जान। अज

सेवक जन मान पर ताख गुरु निसतारी रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम।

सुरमा नंद पास कर आए, चंद्र बिंब मंगलन सुहाए। सरस बान वाहे बिनुदा, गावे सरस बसंत कमुदा। अष्टपुत्र मैं कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी।

प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुर

पाल हरिय पाल हरिय छेद हरिय भेद हरिय जंत्र हरिय मंत्र हरि सो तेज हरिय तंत्र हरि अजात हरिय पात हरिय मित्र हरिय मात हरिय रोग हरिय शोक हरिय भरम हरिय करम हरि।

बिंद के सदैया दाही जकी बटैया देत बंदरा सदीव पाए नांगी फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रभी ने एक ज्ञान के विहीन छेन कह सके तरत है भूत बन चारी छित छौन सब दूधा धारी पवन के आहारी सो भुजंग जानियत है त्रिण के बछैया धन लोभ के तजैया देत गौवन के जैया वृक भैया मानियत है नभ के उड़ैया ताहे पंछ की बटैया देत बगुला बिटाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है जेते वड ज्ञानी तेनो जानी पै बखानी नाहे ऐसना प्रपंच मन भूल अनियत है भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कह नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानी है फल के बछैया ताहे बांधरी गजैया कहे आदस फिरैया ते तो भूत कह पछानी है जल के तरे यगो गंगे ऋषि कहत जग आग के भजैया सो चकोर सम मानिय सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है नारायण कछ मछ तिंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जेह ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब देन चारी रिखी के सनाम के महंत लहियत है माधव भवर ओ अड्डे रुको कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है मूड रूड पीडत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके रख रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैल सार सदा व्रत पाल जम जाल ते रहत है जोगी जट्टाधारी सत्य सच्चे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है न्योली करम जल होम पावक पावन होम अधोमुख एक पाए ठंड न बहत है मानव फनिंद देव दानव न पाव भेद भेद योग देव नेत नेत कह कहत है नाचत फिरत मूर बादर करत घोर दामनी अनेक भाव करियो करत है चंद्रमात शीतल न सूर स्थित पत तेज इंद्र सोन राजा भव भूम को भरत है शिव से तपस्या ब्रह्मा से न भेदचारी सनत कुमार सी तपस्न अनत है ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है ब्रह्मा अर विषण के ते वेद यो पुराण के ते सिमृत समूहन के होय होय बिताए है मोन दी मजार कित्ते असनी कुमार कित्ते अंसा अवतार कित्ते काल भस भय है पीर यो पिगंबर कित्ते गाने ना परत इत भूम ही ते होय के फेर भूम ही मिलाए है जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई को सुलो चरत है बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है मान से महीप और दिलीप कस छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है दार से दिली सरद्रु जो धन से मान धारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है सिज दे करे अनेक तोप जी कपट भेष पोष दी अनेक दानी वावत है शीश कहो कहा भयो मल्ल जो पे काटत अनेक दंड सो तो ना डंडो

करता करीम सोई राज करहीम ओई दूसरो न भेद कोई बोल भ्रम मान बो एक ही किसेव सब ही गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक बयन एक को भ्रमाओ है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन।

जैसे एक आग ते कनु का गोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हो ताई ते उपज सब ताई में समाएंगे। केते कछ मछ केते उनको करत वच केते अच वच।

सतेज रीनता हित उपज सब ताहि मैं समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग वासी कित मदीना मकानी वासी के तक उदासी के फरमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जाप सी घस हारे चंदन लगाए हारे चोआ चार बूझ हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरन मनाए हारे मडी मडली पहारे भी तन लगाए।

बिरा कौन भेखंगा हा नाम दा को कहा कह कहा वह कहा कह बखानो कहे मैं ना वे न रोगंग न सोगंग न मोहंग न मातंग न कर्मंग न परमंग न जन्मंग न जातंग वैखंग बेखंग जूनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग छयाद अद्वय अविनाशी न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय उसारे गड़े फेर मेटे बनाए अगाधे अभयाद अद्वय अविनाशी परे अंग परा परम पूरण प्रकाशी न आदंग न व्याधंग गादंग स्वरूप अखंड प्रतापाद अच्छ विभूते न जन्मंग न मरनंग न बरनंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग स्नेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्र सुभूते भविखे भवाने अचित्रे न रायंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग अभेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो नीय छयाद अद्वया जोहंग न जन्मंग न मरनंग न बरनंग न व्याधंग न रोगंग न सोगंग अभय निर्विखादंग अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग बंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध बिरदंग।

न शोकं न साकं परे यं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न वर्मं न सर्मं न साके न परमं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं।

कहूँ दे हदो खंगाऊँ आओ खुदी रोक के सोक सो खंगाऊँ देव विद्या कहूँ दे दबाने कहूँ जाचे कंद्रव के नर कहानी कहूँ राजसी साधकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जोग तंग कहूँ भूम की भुगत मैं ब्रह्म भुगतंग कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हूँ कहूँ जक्ष विद्या धरे मानवी हूँ कहूँ राजसी हूँ कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपंग कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपंग कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपंग कहूँ चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपंग कहूँ ब्रह्म पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध सेखंग कहूँ ब्रह्म धर्मंग कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मंग कहूँ ज्वाल स्वरूपंग जरा रहत देहंग कहूँ नेह देहंग कहूँ त्याग गृहंग कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज

कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतंग कहूँ शस्त्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीत।

अव्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अक्षय स्वरूप द्वय अनाश अंतुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंत सर्वं प्रकार अनुभूत तेज अंश जिगाद करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धरम जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र माद जय करम भरम नहीं धरम।

जेह त्रास वास नहीं देह नास जेह आद अंत नहीं रूप रास जेह रोग सोग नहीं जोग जुगत जेह त्रास आस नहीं भूम भुगत जेह काल प्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जेह नेत नेत उचरंत वेद जेह अलख रूप कथत कतेब जेह अलख रूप आसन अडोल जेह अमित तेज अक्षय तोल जेह ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत घाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध बाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मध पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र तुचरंत।

सुर नर मुन बंधन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे काव रूक मारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकनी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंघारोहन बितल तले जय जय हो श्री सब ठौर निवासन बाए पताल आकाशन ले संकटे निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकर खण।

चछरा सुन मारन नरक निवारण पति दो उदारण एक बड़े पापान बेहंडन दोष प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रान चारे नरक निवारे पति दो धारे मुंड मथे जय जय हुसी मैं का सुर मर्दन धूम्र विदुंसन आद कथे रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दन दान वर्दन बिडाल पदे सरधार बिबरखन दुर्जन धरखन अतुल अमरखन धरम तुझे धूमराज विदुंसन श्रुण।

करुणा निधान कारण स्वरूप जे चक्र चरण नहीं रंग रूप जे खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धंग विरह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जे रूप रेख नहीं रंग राग अंश तेज अन्वेजताक जल थल महीब वंदन दुरंत जेह ने

खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हु मिल गायो। वेद कतेव न वेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमापत से दसनाथ सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब पचहारे। वेद न पाए सके उन भेद को खेद तह अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे। याद नाथ वैग जप्यो तिन्ही कुल तारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बोधान महाव्रत धारे। देश फिरो कर भेष सबोधन केस धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे।

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धारियों के चलैया महासतरण के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जतैया विरुद्ध के मटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के माल है। ज्ञान हूँ के ज्ञात महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमालय ध्याव गोर गारे देज गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कूरे से जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेल तेरी मन सो तपस्या कर दीड़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आगे में चलत है। रोह के रोहेले माग देश के मंगेले बीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे चीन मचीन के शीश न्यावे तिब्बत थे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तोह ध्यायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साधा दीन कहियत है। पाई न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पछ पहुचत दाहे जिट की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते ससरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यासे प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है। करते हैं विचार पैन पूर्ण को पावे पार ताहिते अपार निराधार लहियत है। पूर्ण अवतार निराधार है न पार अवार पाइय न पार पै अपार के बखानी है। अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है नासी के मानी है। जंत्र हूँ न जात जा की बाप हूँ न मायता की पूर्ण प्रभा की सुछटा के अनुमानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है। तेज हूँ कतार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना की सान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ का रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को बहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है। काम को निंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के सतरुण के साल है के मित्रन को बोगत है के वृद्धता की बासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के भूहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बास है के बुद्ध हूँ को घर है। देवन को देव है निरंजन अभिव है या देवन को देव है के शुद्धता को सार है। जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जंजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है या खंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है। विश्व को भरण है गया पदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार बारा वार हूँ को पार जाको की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय का वह बसी हल।

अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया द्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरा वध छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छब काल इंद्र के कूल के हंसनी से सिहा रूम ही रसी हो सेना बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी राम पूर सूरा सी सुरंगा वादनी के रही झूल के चंपा सी चंदेरी गोट चांदनी सी चांदगढ़ की रत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कंसी पूर सी ससी सुरंगाबाद नि के सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा ने रहंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चंदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकान सी बिलंदाबाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है बकरी कंधारी गोर गखरी गर्दी जाचारी पवन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं बिराजे जहां।

संगत गुण प्रगास जन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए दृग जीव दृग जीवास जिन हर जिन सतगुर संगत पाई तिन धर्म मस्तक लखया लखास धन धन सत संगत।

पृच्छत वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया गुर

चौपई सम सतरह सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कहे जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा।

पावेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा तिन बेदियन की कुल बिख प्रगटे नानक राय सब सिखन को।

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत। स्वर्ग बास रघुबर कर सगरी पुरी समेत। चौपाई जो यह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे। बिशन भगत किए फल हुई आद ब्याह छह सकै न कोई। सम सत्र सैस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन।

साहिब अजीत सिंह जी, साहिब जुझार सिंह जी, साहिब जोरावर सिंह जी, साहिब फतेह सिंह जी, पंज प्यारियो चाली मुक्तियो सर्व शहीदो मरीदो सचियारियो प्यारियो सब थाई होए सहाय। सलोक महला दूजा, आपे जाने करे आप आपे आने रास, तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहेब बोलो जी। सर्व समूह खालसे जी की अरदास, श्री वाहिगुरु जी के पास। जहां जहां गुरु खालसा जी साहेब, तहां तहां रचिया रियत, बिरद की पैज रहे पंथ की जीत, श्री साहेब जी सहाय। खालसे जी का मन नीवा, मत ऊची मत पत का राखा, आप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख तेग फते, चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे, धर्म का जयकार खालसा जी साहेब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान, सिखी दान, गुरमत दान, बुद्ध बबेक रहत रिछा दान। खालसे जी को श्री हरमंदर साहिब, अमृत सर सरोवर जी के स्नान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ, दर्शन दुदार मिले बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी, संतोख सर जी, बबेक सर जी, राम सर जी, कौल सर जी, तरन तारण जी, तपियाने जी, खडूर जी, गुरु की बौली, श्री गोविंदवाल साहिब जी के स्नान, दर्शन दुदार मिले बोलो जी। थम जी, ननकाणी जी, करतारपुर जी, बाबे नानक डेहरे जी, तख्त केसगढ़ साहिब, आनंदपुर जी, कीरतपुर जी, पातालपुर जी, लखनौर जी, चमकौर जी, फतेहगढ़ साहिब जी, दमदमा साहिब जी, धमतान जी, मुक्तसर जी, पौंटे जी, तख्त पटना साहिब, हर मंदिर दिल्ली में, शीश गंज, रकाबगंज, बाला साहिब, बंगला साहिब, सत्तो झंडिया साहिबां जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी। हम जी, ननकाने जी, करतारपुर जी, बाबे नानक डेहरे जी, तख्त केसगढ़ साहिब, आनंदपुर जी, कीरतपुर जी, पातालपुर जी, लखनौर जी, चमकौर जी, फतेहगढ़ साहिब जी, दमदमा साहिब जी, धमतान जी, मुक्तसर जी, पौंटे जी, तख्त पटना साहिब, हरमंदर दिल्ली में, शीशगंज, रकाबगंज, बाला साहिब, बंगला साहिब, सत्तो झंडिया साहिबां जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी। भगौड़ साहिब जी, पंजे साहिब जी, कपाल मोचन जी, रण मोचन जी, नानक मत्ते जी, तिलगन जी, नानक झीरा जी, शिकार घाट जी, हीरा घाट जी, माता साहिब देवा जी, संगत साहिब जी, मालटेकड़ी साहिब जी, बसमत नगर, दमदमा साहिब जी, बंदा घाट जी, नगीना घाट जी, श्री गंगा जी, गोदावरी जी के स्नान, दर्शन दार मिले बोलो जी। सर्व समूह खालसे जी को नगारे या निशान साहिबा संजगत, तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहिब बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहिब बोलो जी। बोलो जी, बोलो बोलो जी, श्री वाहिगुरु जी। गुरु गरीब नवाज अंतरजामी सचे पातशाह जी महाराज, आप जी के हजूर अमृतमयी शब्द वाणी, कीर्तन चौकी सोदर रहरा साहिब जी की अरदास। अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करना, बाणी सच खंड विच प्रवान करना, आईया समूह संगतां दी हाजरी प्रवान करना, सिख पढ़दे सुणदे सर्व तलाहे बंद होण, गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

खुशियां पे देखा जावे सोनिया डारो जावे सात सुनिया सात गुरुवरिया का देवे चार लगन

0: श्लोक महला पहला श्लोक
1: बड़े बड़े आए जा बड़ा नाम बड़े बड़े आए जा सुनने ना बड़े बड़े जाने जा सुनने ना बड़े बड़े जाने जा बड़े बड़े बुझ सुफा बड़े बड़े जाने जा सुनने ना बड़े बड़े जाने जा

सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुनाया सुन

सेव कित संतोखे जिन सचो सत्य आया उन्हें मंद पहना रखे होकर सुग्रे धर्म कमाया उन्हें दुनिया थोड़े बंदना न पाने थोड़ा खाया तू बख्शिश

किया कमाना अल मल खाय सिर शाय पाए मोर गंध पद गवाए विण ना वे किस्ता न पाए रे बिबाणी मुड़ी मसाने अंध न जाने फिर पछताने सतगुरु बेटे सुसु

0: कुर राजा कुर प्रजा कुर सब संसार कुर मंडप कुर माड़ी कुर बैसनहार कुर सोना कुर रूपा कुर पननहार कुर पाया कुर कपड़ कुर रूपपार कुर मिया कुर विवेखा फोयखा कुर कुर निहलका विसरा करतार किसनार किचे दोस्ती सब जग चरनहार कुर मिठा कुर माख्यों कुर डोबे पूर नानक खान बेंती तुलवाज कुर कुर महला पहला
1: सचता प्रजन जर दिस चाहो कूड़ के मल उतरे तन करे हच्चा तो हो।